हरे को दी विस्तेज नयो कई लिहराई ले अरे यही तुझे फिराई नरा ऐसी क्यों मला ये वोट का वो लशाब लफत्तुओ वो ले ऐसी क्यों यानी सन्नी लगाई इस बार लही तू